गुड न्यूज एफएम 105.1 विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: जय मसी, म सृजना बोहरा। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ गुड न्यूज एफएम 105.1 MHz।
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम आत्मिक यात्रा।

0: बाइबल सम्बन्धी प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हाम्रो प्रश्न तपाईँको जवाब सुन्न नभुल्नुहोला। प्रत्येक आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म कुमार अब्राहमको साथमा।
1: गुड न्यूज एफएम 105.1।
2: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी आवाज।

0: about Good News FM 105.5 MHz.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम गोस्पल फर